0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी.

छ्याजलो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org नानार 8 बजे खबर तमु क्यु मर्सङ्गी फेतेरी गा कुसमाय तमुशोला तेवा म वंशरी एक रात फेते नेपाली कांग्रेस ने केन्द्रीय सदस्य री लमजुङ दक्या 9 जना जी उम्मेदवारी घोषणा लय मु सुपर गांधी हाइड्रो पावर आयोजना केलावा पोखरा रिंग अरब दिन सम्मा चन्दीप कलश उतारे न एकीकृत सेवा शिविर संचालन 814 वटा सेवा प्रवाह 13 तारीख सुझाइन 29-13 गते दक्या 12 लिग लिग दौड़ प्रतियोगिता नेपाली कांग्रेस ने 15 महाधिवेशन केन्द्र सदस्य लागि लमजुङ दक्या 9 जनाजी उम्मेदवारी घोषणा लैम विभिन्न क्लस्टर अरी 9 जनाजी सामाजिक सञ्जाल दक्या उम्मेदवारी पिंग घोषणा लैम गण्डकी प्रदेश भूगोल दर्फरी कांग्रेस लमजुङ निवर्तमान सभापति दिएर गण्डकी प्रदेश सर्वे सभा सदस्य बेश बहादुर पौडेलजी उम्मेदवारी घोषणा लैम खुला केन्द्र सदस्य तर्फरी कांग्रेस लमजुङ पूर्व सभापति तुलसीनारायण श्रेष्ठ दिएर खसारिया तर्फरी कांग्रेस लमजुङ पूर्व सभापति दिएर तोखो सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख समेत मुबा कृष्ण प्रसाद कोइरालाजी उम्मेदवारी घोषणा लैम आदिवासी जनजाति तर्फरी गमप्रसाद तमुजी उम्मेदवारी घोषणा लैम तमु यावा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र कांग्रेस तक्या उम्मेदवारी मोलो आदिवासी जनजाति मुनिमय तर्फरी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पार्वती तामाङ दिएर पार्टी सक्रिय दिएर सामाजिक क्षेत्रले अगुवा अस्मिता तमुसियोजी उम्मेदवारी पिङ तयारी समेत लैम दलित तर्फरी भीमसिन दमाई दलित महिला क्लस्टर गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य टीका कुमारी बस्यालजी उम्मेदवारी घोषणा लैम मर्सिङ नासपालिका छहरी बनेरी सुपर गाँधी हाइड्रो पावर आयोजना केलबा क्री केलबा मिरी प्रोदकिया टीआईमरी वाथियामरी सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका 837 वर्षिया रमेश कुमार चौधरी मु सोमबार नानरी आयोजना केरी खटेबा बेलारी चौधरी केलबा खेव नजिक एयरवे प्रोदकिया टीआईमरी 20 मीटर नोरी तियाबा बीमु प्रोदकिया टीआईमरी घाइते तयाबा चौधरीला उधार लबै लैमरी प्रदेश अस्पताल लमचुङरी पोखोलो तर महिलाबा क्रमरी थिङिरी थिजे वाथियाबा चिकित्सा मजी घोषणा कोलसुता नासपालिका पोखरारी अरब दिनसम्म सञ्चालन लवा एकीकृत सेवा शिविरारी 814 वटा सेवा पिम नासपालिकाजी पोखरा दिएर आसपास टी खबा आफैन नास थेमै दिए लक्षित लैमरी आयोजना लबा 13 गते त 17 गतेसम्म पोखरारी पोखरा 12 सेती नहर मुभा पैगो नास तमु समाज शिविर सञ्चालन लो शिविर ताइभन्दले मुइ बालो लभ सम्बन्धी बे सेवारी 350 जना मुविष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सेवारी 318 नागरिक सिफारिश 13 प्रतिलिपि किमै तर्फरी 38 जना व्यक्तिगत घटना दर्ता 13 प्रतिलिपि तर्फरी 69 जना र 13 अरू सिफारिश 13 विविध सेवा किम 47 जना मुभा नासपालिकाजी दिनाय प्रकाशन लभ्यमैन विवरण रे फ्रेम शिविरारी पहिलो दिनारी 85 जनाजी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण दिएर 12 जनाजी भूमिकर सम्पत्ति कर्तिर दिसिम विषय 9 वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता हेलो नयाँ नागरिक सिफारिश 6 वटा नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश तर 11 वटा अरू सिफारिश सेवा प्रवाहलाई म दोस्रो दिन सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण 89 जनाजी राजस्व संकलन 55 नागरिक दिएर नागरिकता दिएर भाषागत सिफारिश 11 जना व्यक्तिगत घटना दर्ता दिएर प्रमाणीकरण 8 अरू सिफारिश 8 वटा मुभिस तेस्रो दिनारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण 64 राजस्व 57 सिफारिश दिएर प्रतिलिपि 6 जना व्यक्तिगत घटना दर्ता दिएर प्रतिलिपि 6 जना अरू सिफारिश 8 जना चौथो दिन सुरक्षा भत्ता नवीकरण 76 जना राजस्व संकलन 115 नागरिक सिफारिश 13 प्रतिलिपि 13 जना व्यक्तिगत घटना दर्ता दिएर प्रतिलिपि 21 जना दिएर सिफारिश सेवा 12 जनाजी केसी म छलाइन नासपालिका कार्यालयसम्म थोनीबद्ध झन्झट घरतेसी भोबा पोखरारी मुभा मिमेदी आफै नै बसोबास क्षेत्र रह सेवा उपलब्ध लमिबा नासपालिकाजी बिम
ठेवा दशैं नजिकै खबर देवालय नासा ठोरी सरसफाई अभियान शुरू तैमा जिल्लाको विभिन्न नासा थेमे आमा समूह युवा क्लब दिएर विभिन्न समुदायमै सामूहिक रूपले आफैन टोल सरसफाई लबके शुरू लैम विशेष लैमरी नासा थेमेजी ना युवा लिसु हिलो तयाबा क्यामै क्यादा युमातीबा झाडी फाड्दीबा सिरेदा कुछ फिर पाता भी के मेल मो चार पर्व खबर दे बाला में आफ मीमें आफ नाश थे मे परिवार जन में सजिल यू नाश थोड़ी तुम्हार के बीमारी सर सफाई री जुर दिबा नाश थे मेजी बीमा दस थे पर्व तब तई मरी चो पर्व दे बेले तोनले महादेवाई लगे सर सफाई भी छोक यो महत्व तब नाश थे मेजी बीमा नाश थे मे तायो कृ तैमरी सर सफाई लभरी वातावरण बिनी सफा तब तैमरी तायो बालू तैमरी तोई मरी नासुथे में तायो सार सफाई गई फूल दे मो जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ जी भदौ महिना महिना उत्कृष्ट कर्मचारी नरूपरे नायब सुब्ब नेत्रबहादुर तमुदे घोषणा लैम कार्यालय नागरिक साखरी के लाई खबा तमुदे उत्कृष्ट कर्मचारी नरूपरे छनौट लैम मार्सिङदी नासापालिका तीन ठगै तीन मुबा तमुजी 2077 सालदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङगरी विभिन्न जिम्मेवारी के लाई खै मतको थी नागरिक साखरी सेवाग्राही सेवा पिबा के लै खबा लैमरी प्रशासनिक जिम्मेवारी समेत निर्वाह लै खैम कार्यालय अनुसार कर्मचारी न के छिबा जिम्मेवारी फेरी लगनशीलता अनुशासन दिएर सेवा फेरी योगदानकै आधार बनी मरी तमुदी भदौ महिना भए उत्कृष्ट कर्मचारी रूपारी छान्डीबा पिएम उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित तब तमुदे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालजी मंगलबार प्रशंसा पत्र पिमारी सम्मान ललो प्रशंसा पत्र पिमारी प्रज्ञा खनालजी कर्मचारी न मेहनत दिएर जिम्मेवारी फेरी प्रतिबद्धता न मूल्यांकन छ कार्यालय सकारात्मक के न संस्कृति विकास तबरे सहयोग तबा बिम गोर्खाबे पालुङटार नगरपालिकाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक दर पर्यटक पहिचान देवालो जोड़ दिवा लिगलिग दौड़ प्रतियोगिता ताराखबा असोजुन 30 गति तसिम यहां वर्ष दा लिगलिग कोट विकास अभियान जी संचालन लाई खबर प्रतियोगिता चुबा

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यरी लमजुङ दकिया नौजनाजी उम्मेद्वारी घोषणा लैमा सुपर गाँधी हाइदो पावड़ा आयोजना देखिएलाभा प्रदकिया टीएमआर वाथिएम पोखरा रिंग रूप दिनसम्म चल्दीबा कोलसोथारण एकीकृत सेवा शिविर अरी 884 सेवा प्रवाह लैम ते तारख असोजैन 29 गते 12 लिगिक दौड़ प्रतियोगिता तसिम नानर खबर तमुकी मौसमी फेटे तोखो बेलागी छिजी प्राविधिक छु सुजन दे धन्यवाद बिमारी फेटे कसिक्याङ खुसी माया तमु सेउ विदा किमु रेडियो मर्सिङ दि 95 मेगाहर्ज दे इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सिङ दि .org यिङ दिलात ओ छाजलो

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.